नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आपको सुनवा रहे हैं। आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने मन के।

कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं गीता मेरा नाम फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है।

इसी गीत के साथ श्रोताओं तराने मन के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सचिता, और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये देशभक्ति गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में आपको सुनवा रही हैं ये गीत। फिल्म का नाम है जान की कसम।

सैनिक भाइयों, अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में अभी आपने साहिबान फिल्म का ये गीत सुना। कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया कार्यक्रम का ये अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म को, माफ कीजिएगा, इस गीत को हमने लिया है फिल्म आंटी नंबर 1 से।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत आशा भोंसले और कुमार सानू की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कल की आवाज़।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का प्यारा सा स्पेशल प्रोग्राम बाल सभा लेकर। और रेडियो दीदी प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है, दिल की गहराइयों से ढेर सारा स्वागत। और हाँ, बहुत सारा लाड प्यार और दुलार यह रेडियो दीदी अपने प्यारे प्यारे गोल मोलू बच्चों को भेज रही है। और इस लाड प्यार और दुलार को आपने रखना है संभाल कर, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है और आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। दिल की गहराइयों से बहुत सारा अभिनंदन, आभार हमारे उन तमाम श्रोताओं का जो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग और प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

तो अब रेडियो दीदी प्रवीण अपने नन्हे दोस्तों को बता देती है आज का विषय। जी हाँ, बहुत सारी बातें और जानकारियां आपकी रेडियो दीदी लेकर आती है, लेकिन कुछ एक विशेष जानकारियां होती हैं जिन पर हम बात करते हैं इस आधे घंटे की क्लास में। तो आज हम बात करेंगे अपने नन्हे दोस्तों के संग मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग। चिंता में आप जरूर डूब गए होंगे। अरे दीदी, एक छोटा सा रविवार होता है, प्यारा सा रविवार होता है। आपको पता है, सुबह से मम्मा भी ही डांटे जा रही है, फ़ोन लेके बैठे हो, फ़ोन लेके बैठे हो। अरे दीदी, आपको ये सूचना कौन दे देता है कि हमारे बच्चे फ़ोन लेकर बैठते हैं? तो नन्हे दोस्तों, इस विषय पर आपको आज आपकी ये दीदी समझाएगी और इसके साथ साथ हम बात करेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर। तो पहले कौन से विषय पर हम बात करें, ये रेडियो दीदी आपसे जानना चाहती है। और रेडियो दीदी आपको थोड़ा सा समय देती है और जब तक आप सोचें हम बात कर लेते हैं मौसम की। जी हाँ, उमस भरा ये मौसम काफ़ी सता रहा है। भाई, रेडियो दीदी को सच में बहुत गर्मी लगती है और मुझे लगता है कि अगर आपकी दीदी को गर्मी लगती है ना, तो ये गर्मी ये मौसम हमारे बच्चों को भी खूब सताता होगा। और ख़ासकर भाई, रविवार के दिन आपको बहुत गर्मी लगती होगी क्योंकि कोई ना कोई शरारत को आपको चाहिए होती है ना कि चलो मम्मा को थोड़ा सा सताया जाए। मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ मम्मा ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। और बेचारी मम्मा पता है क्या करती है? नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाना है, थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर देती हूँ। लेकिन आप कहाँ मानते हैं, है ना? तो बच्चों, मम्मा को आपकी सेहत का, आपके स्वास्थ्य का ख्याल होता है, इसलिए मम्मा आपसे रिक्वेस्ट करती है कि गुनगुने पानी से नहाना है। तो कभी कभार मम्मा की बात को भी मान लिया करो। और हाँ नन्हे दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी में बाहर आपने बिल्कुल भी नहीं निकलना है। हाँ, अगर कोई ज़रूरी कार्य आपको है तो छाता लेकर ही जाना है, और बहुत ज़रूरी है कि घर का कोई बड़ा सदस्य आपके साथ हो, अकेले कहीं नहीं जाना है, ठीक है? हाँ, क्योंकि भाई सभी को चिंता होती है। कई बार होता है हमारे बच्चे गुस्से में या फिर कोई भाई आपके मन की ऐसी बात होती है, आप ठान लेते हैं कि चलो हम अकेले ही इस काम को कर लेते हैं, तो थोड़ा सा खुद को समझाना है, बड़ों की बात को सुनना है और उसी के बाद कोई फैसला लेना है। तो चलिए, अब आपकी रेडियो दीदी अपनी बातों को देती है विराम। जी हाँ, ये जो हमने अपनी बातों की रेलगाड़ी दौड़ा दी है ना, इसको यहीं पर रोकते हैं और पहुंचा दिया है अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के रेडियो सेल्स पर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। इस गीत को सुनिए और पुनः आपने लौट कर आना है हमारे पास।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नीलम, छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: एक बार फिर से सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी क्लास में। जी हाँ, रेडियो दीदी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के संग बहुत सारी बातें अब करेगी और बहुत सारा आपको समझाएगी, इसलिए आपने अपने दिमाग और कान दोनों को खुला रखना है। तो बच्चों, हम बात करते हैं मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग के बारे में। कहते हैं नन्हे दोस्तों की अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, फिर चाहे वो खाना हो, सोना हो, पीना हो, कोई भी चीज़ हो, वो सीमित मात्रा में ही अच्छी लगती है और अगर ज़्यादा हो जाए ना तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही बात अगर हम करें मोबाइल फ़ोन की, तो आज की भागम भाग भरी जीवन शैली में हर किसी ने फ़ोन को अपना पहला साथी बनाया है। ऐसा ही है ना, सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक हर कोई अपने फ़ोन के पीछे भागता है। ना जाने क्यों, सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने फ़ोन को ढूंढता है। असीमित डेटा का उपयोग होता है, थोड़े से भी फुर्सत के पल होना तो मन में ख्याल सिर्फ और सिर्फ फ़ोन का आता है कि चलो फ़ोन को उठाते हैं, और कुछ फुर्सत के पल हैं तो फ़ोन को देख लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, दोस्तों के साथ कहीं घुल मिल लेते हैं या फिर बातें उनसे बतिया लेते हैं, ऐसे ही कुछ ख्याल आते हैं ना। और बच्चों, ये फुर्सत के पल जो हैं वो कब घंटों में बदल जाते हैं, इस बात का अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं होता है ना। और बच्चों, फोन है तो उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। मोबाइल में ऐसा सीखने के लिए बहुत कुछ अच्छा होता है जिसे हम सीख सकते हैं, बहुत सारे काम हम सीख सकते हैं, लेकिन जब बात दुरुपयोग की आती है तो हम अच्छा सीखने की बजाय कुछ ऐसा सीख लेते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं जिसका पता शायद हमारे पेरेंट्स को भी नहीं होता है। और सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से हमारा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों पर आपने नज़र ज़रूर रखनी है कि वो फ़ोन में क्या देख रहा है, किसके साथ बातें कर रहा है। और माना कि सभी की ज़िंदगी में व्यस्तता है, हर कोई बहुत ही बिजी है, आज पेरेंट्स दोनों काम काजी हैं, दोनों नौकरी पेशा है, तो थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालना है अगर आप चाहते हैं कि उनका आने वाला कल सुरक्षित रहे, उनका आने वाला कल संवरे, तो आज थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालना है। और हाँ नन्हे दोस्तों, अगर आप फ़ोन में कोई अच्छा काम सीखते हैं ना, तो हमेशा ये बात याद रखना कि अच्छा सीखा हुआ कार्य हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमारे काम ज़रूर आता है। और बच्चों, आपको ये लग रहा होगा कि दीदी हमें क्यों समझा रही है ना। एक प्यारा सा संडे होता है, इसमें भी दीदी उठकर आ जाती है और हमें समझाने लगती है। बच्चों, आज आपको यही लग रहा है कि आपके पास फ़ोन है तो आपके पास सब कुछ है, दुनिया की सारी खुशी, दुनिया की सारी चीज़ें, सारी सहूलियत आपके पास है, लेकिन आपकी यही सोच गलत है, आपकी ये धारणा गलत है। क्योंकि बच्चों मोबाइल फोन के लगातार इस्तेमाल से आप अपने आप को बीमारियों के जाल में फंसा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप कौन सी दुनिया में खुद को धकेल रहे हैं। धीमे धीमे ये मीठा जहर आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आज भले ही आपको दीदी की ये बातें, दीदी का ये समझाना कड़वा लग रहा हो, जहर की तरह लग रहा होगा, और आज आपको ये भी लग रहा होगा हे भगवान दीदी को यहाँ से ले जाओ, बहुत डांट रही है, बहुत समझा रही है दीदी आपको, है ना। लेकिन जब आप कल को बड़े हो जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, किसी बड़े ओहदे पर बैठेंगे, बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, तो यही बातें आपको मीठी लगेंगी और दीदी भी आपको उस समय ज़रूर अच्छी लगेगी। तो फ़ोन की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि बाहर का संसार बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है ये दुनिया। कुदरत ने ऐसी बहुत सी अनमोल चीज़ें मानव जाति को दी हैं, तो इन्हें निहारो, कुछ पल प्रकृति की गोद में बैठो, इससे बातें करो, कुछ अपने दिल की सुनाओ और कुछ प्रकृति की भी सुनो, ये भी हमें बहुत कुछ कहती है। तो फिलहाल हम फिर से यहाँ पर रुक रहे हैं और सुनवाते हैं अपने नन्हे दोस्तों को एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, और उम्मीद यही करते हैं कि जो बात अभी दीदी ने आपको समझाई, आपने ज़रूर इस बात पर अमल करना है।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बाल सभा में। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग और स्टूडियो में समय है बच्चों की जानी पहचानी भुलक्कड़ सी रेडियो दीदी प्रवीण। तो कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात आप संग साझा करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में। यानी बच्चों जिन खाद्य पदार्थों को हम रोज खाते हैं वो हमारे लिए कितने सुरक्षित हैं। जी हाँ, आपको हम बता देते हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 7 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने की थी। बच्चों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने का उद्देश्य दूषित भोजन और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों के जोखिमों को रोकना, उनकी पहचान करना और आम जन को सुरक्षित व पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करना है। नन्हे दोस्तों हर साल गंदा खाना खाने से यानी दूषित भोजन लेने से और गंदा पानी पीने से दुनिया भर में लाखों लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं और कई बार तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। बच्चों आज का दिन हमें ये सिखाता है बीमारी से बचने के लिए खेत से लेकर थाली तक भोजन को सुरक्षित और स्वच्छ रखना कितना जरूरी होता है। नन्हे दोस्तों जब हम अच्छा खाना खाते हैं, पौष्टिक भोजन जब हम खाते हैं तो यह सिर्फ हमें स्वस्थ नहीं बनाता है अपितु ये हमारी कृषि विकास को भी बढ़ावा देता है, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। नन्हे दोस्तों आज का दिन ये भी सिखाता है कि साफ सुरक्षित भोजन सभी की साझा जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी में सरकार, उपभोक्ता और उत्पादक सभी शामिल होते हैं। इसमें साफ सफाई और वैश्विक खाद्य मानकों का पालन, उचित भंडारण शामिल होता है। नन्हे दोस्तों हम आपको बता दें कि खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए आपने जरूर धोना है। जल्दबाजी में ऐसे नहीं करना है कि एक सेकंड लगाया और थाली की तरफ भाग गई कि मम्मा बड़े जोरों की भूख लगी है, बस हो गया, धो लिया मैंने हाथ। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। साफ सफाई का आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। वो कहते हैं ना, और आपने सुना भी है कि बहुत सारी बीमारियां गंदे हाथों की वजह से भी होती हैं। बर्तनों और किचन की स्लैब को गर्म पानी से अच्छी तरह से ज़रूर धोना है। हफ्ते में कम से कम 2 बार किचन स्लैब को ज़रूर धोना है। और हाँ नन्ही दोस्तों, खरीदी गई सब्जियों को अगर पहले उबाल लें जो उबालने लायक होती हैं, उसी के बाद उनको पकाएं और नमक वाले पानी में सब्जियों को डुबोकर रखें। इस साल यानी 2026 की थीम है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। और खाद्य जनित बीमारियों को कम करने, सुरक्षित भोजन प्रदान करने पर जोर देती है। तो एक बार पुनः आपको हम दोहरा देते हैं, बाहरी खाद्य पदार्थों का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ, कहीं अगर मुझे आप दिख गए ना तो आपका कान मरोड़ कर आपसे ज़रूर पूछूंगी कि रेडियो दीदी इतना सिखाती है तो फिर सीखते क्यों नहीं है। और बच्चे जो डिब्बाबंद जूस होते हैं उनका उपयोग भी आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। घर पर बना ताज़ा वो पौष्टिक सुपाच्य भोजन ही आपने लेना है, तभी आप शक्तिमान बनेंगे। दिखावे वाला भोजन अगर आप खाते हैं, खाना अगर आप खाते हैं तो शरीर भी आपका बिल्कुल वैसा ही होगा। और कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम का ये आखिरी सेगमेंट है, आखिरी पड़ाव है, और इस आखिरी सेगमेंट को हम सजाएंगे आज का ज्ञान देकर। तो बहुत ही ध्यान से आपने आज का ज्ञान सुनना है। जीव व शब्द दो अनमोल तोहफे हैं। किसी ने इससे बहुत सारा सुकून कमाया है तो किसी ने इससे सब कुछ गवाया है। अंत में रेडियो दीदी आपसे यही कहेगी। जी हाँ, कबीर जी का दोहा है, ध्यान से सुनिएगा। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। इसलिए हमेशा आपने मीठी वाणी बोलनी है, अच्छा बोलना है और ध्यान से बोलना है। अपने शब्दों का सही चुनाव करना है और एक बात को आपने ध्यान में रखना है कि जब आप बोल रहे हैं ना, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण आपने ज़रूर रखना है। आपकी वाणी से, आपके निकले हुए शब्दों से किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी की भावनाएँ आहत ना हो। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। और चलते चलते ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत हमारे सभी श्रोताओं की नज़र।

तो नन्ही दोस्तों, जाने से पहले हम आपको ये बता दें, आज के कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे विपिन कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है। अब पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने IDFC फर्स्ट बैंक और एजू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली NCR क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं उसी शब्द पर आधारित जी। तो लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में ये एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है?

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतज़ार है हम सभी को बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार के तरह ही बन जाता है। तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी, बिल्कुल सही। जो कब आएगा, कितना इंतज़ार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतजार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका एक आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफ़र का कार्यक्रम हम सफ़र बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और ज़िंदगी की ट्रेन में अब हम काफ़ी आगे के डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज़ भी नहीं रह गई। वो रह गुज़र, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी हैं। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है, और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना।

जी उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती हैं कि जिस भी उम्र में जो चीज़ दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही ज़रा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो। कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है जब तुम पुकारते हो। तुम्हारे दिल की गली तक पहुँचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूँ, मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन के सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथियों की आवाज़ों में। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज़्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज

इस जमाने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज़्यादा ज़्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा के। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसके जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए।

एक श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता के कुछ लाइनें यहाँ पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब यह आ गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

यहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं, ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता है।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज़ होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफ़र को। चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री हैं, यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल हैं हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतज़ार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बड़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

0: जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नज़र, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है।
1: मिलो

जी हाँ, हीर ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे हैं आनंद बख्शी के बोल एस डी बर्मन का संगीत। हीर राजा फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसे लिखा था कैफी आजमी ने, मदन मोहन का संगीत था।

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

नमस्कार। सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शरीर को चलाता है और रात में सोते हुए शरीर की टूट फूट दुरुस्त कर थकान मिटाता है, आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही हैं जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे इस योग्य बना देते हैं कि वो लहलहाती गेहूं या धान की बालियों में पककर अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।

0: खाया।
1: भोजन प्रसाद है, इसीलिए भोजन सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना ना तो जरूरत से ज्यादा पका हो और ना ही अध पका हो। थाली में 56 व्यंजन हो ना हो, भोजन की चाह जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहाँ तक संभव हो भोजन में षडरस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दें, तभी

0: भोजन में पौष्टिकता, स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। खास तौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शान की बात माने जाते हैं, ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है, उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने की बजाय एक या दो डिशेस तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहली बार में ही अपनी प्लेट लबालब भर ली जाती है और फिर थोड़ा बहुत खाकर बचे हुए ढेर सारे खाने समेत डस्टबिन तक पहुंचा दी जाती है। बात सिर्फ दावतों तक ही सीमित नहीं है, घर में भी अक्सर होने वाली खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए बाजार से जरूरत मुताबिक भोजन सामग्री लाई जाए, उसे एयरटाइट डिब्बों में रखा जाए, साथ ही पकाते वक्त निर्धारित मात्रा में ही भोजन बनाना होगा और जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाना परोसने से बचना होगा, क्योंकि जो चीज पसंद आ रही है उसे दोबारा भी लिया जा सकता है। अगर बड़े इस तरह समझाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे कि जो भी परोसा जाए उसे मुंह बनाकर नहीं बल्कि खुशी से खाना है।
1: ये समझो और समझाओ।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की।

0: संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्ची में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में, वक्त फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल उद्यानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अगला गीत साहिल लुधियानवी के बोल हैं संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: सबसे हसी ए नाम है ये, छू लेने दो नाजुक हो तुमको।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और यह अगला गीत दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। जीएल रावल ने इस गीत को लिखा, सोनिक ओमिका संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बत किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में विकसित किया जा रहा है और इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने आज शिमला जिले के हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 4 लेन परियोजना में सुरंग के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भूस्खलन से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हाटू माता रोपवे परियोजना के निर्माण के दिशा में कार्य कर रही है और नाबार्ड की सहायता से ये परियोजना चलाई जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाटू माता सड़क के सुधार कार्यों के लिए धनराशि मंजूर की गई है और इस कार्य में पेड़ों को कटान से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने निर्विरोध चुनी गई नगर पंचायत नारकंडा को 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। आज विश्व खाद्य दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में

0: योगदान देने का आग्रह किया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने व संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख करते हुए मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है, वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है उसका भी समाधान, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। अटल टनल रोहतांग क्षेत्र में पिछले कुछ समय से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है और यातायात दबाव को देखते हुए लाहौल स्पीति जिला प्रशासन में एक कार्य योजना तैयार की है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन व सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ इस बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन को संभावित आपदाओं व चुनौतियों से निपटने के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार रखने को कहा गया है।
2: ओवर द इयर्स ये देखा गया है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो काफी इंक्रीज हुआ है, इससे डिजास्टर लाइक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अटल टनल है इसमें मेंटेनेंस कब कब होती है, इसका ऑक्सीजन लेवल, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर तो क्या SOPs रहेंगी इसमें। BRO से बोला भी गया है कि इन केस ऑफ डिजास्टर तो सिनेरियो बिल्डिंग करी जाए, इसमें डिफरेंट SOPs बनाई जाए ताकि हम इसमें मिलके काम कर पाएं और ये प्लान कर पाएं कि इस जगह को ये जितनी सुंदर है और जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बना रहे और कोई आउटवर्ड इंसिडेंट ना हो।
0: सिरमौर जिले के दुर्गम क्षेत्र हरिपुर धार का राजकीय प्राथमिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस स्कूल में 200 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूल के 3 विद्यार्थियों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। स्कूल के अध्यापक कमल शर्मा ने बताया कि स्कूल के 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण जयंती माध्यमिक मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मिल रहा है और इसके तहत प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। खास बात यह है कि हरिपुर धार स्कूल में हर वर्ष बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
3: ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी इस पाठशाला से हर वर्ष नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों का चयन होता रहा है। इस वर्ष भी हमारी इस पाठशाला से 3 बच्चों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। नवोदय के अतिरिक्त यहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन है वो सैनिक स्कूल के लिए भी हुआ था। 8 बच्चे ऐसे है जो स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप की जो योजना है उसमें 1,80,000 बच्चों को दिया जाता है, उससे लाभान्वित हो रहे।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 PM। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। आइए अब सुनते हैं सामायिक चर्चा। विषय है जनसमर्थ पोर्टल के 4 वर्ष और वाचक स्वर है अनुराग प्राशर का।
0: जनसमर्थ पोर्टल ने डिजिटल वित्तीय समावेशन और सरल क्रेडिट वितरण के 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसे 6 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। एकल विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर माने जाने वाला ये पोर्टल प्रौद्योगिकी आधारित और उपयोगकर्ता अनुकूल प्रक्रियाओं के माध्यम से संस्थागत क्रेडिट तक पहुंच को सरल बनाता है। ये पोर्टल कृषि, कारोबार, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका सहित कई क्षेत्रों को कवर करता है। ये देश भर में विविध लाभार्थी समूहों का सहयोग करता है। कई भाषाओं में उपलब्ध जन समर्थ एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम के तौर पर उभरा है। ये मंच उद्यमियों, किसानों और आजीविका चाहने वालों के लिए सुगमता, पारदर्शिता और कुशल क्रेडिट सुविधा को प्रोत्साहन देता है। पूरे भारत में उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाएं आमतौर पर एक साधारण आवश्यकता से शुरू होती है, सही समय पर सही मदद। महत्वाकांक्षी उद्यमियों और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों से लेकर कृषि व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवा पेशेवरों तक कई लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए सुलभ और समय पर वित्तीय आवश्यकता होती है। हालांकि सरकारी योजनाओं के माध्यम से कई अवसर मौजूद हैं, लेकिन कई पोर्टलों और प्रक्रियाओं को समझना आम तौर पर चुनौतीपूर्ण बना रहता है। इस आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने क्रेडिट संबंधी योजनाओं के लिए एक डिजिटल मंच के तौर पर जनसमर्थ पोर्टल की शुरुआत की। यह अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है जो लेंडर्स को सीधे लाभार्थियों से जोड़ता है। इसे सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और क्रेडिट वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है। जनसमर्थ ने अपनी यात्रा के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं और पोर्टल निर्बाध क्रेडिट वितरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को मजबूत करना जारी रखे हुए है। जनसमर्थ एकीकृत और यूजर के अनुकूल डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से क्रेडिट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। ये देश के ग्रामीण और वंचित वर्ग की आबादी की सुविधा के लिए 8 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। ये पोर्टल क्रेडिट संबंधी 16 केंद्रीय सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल गेटवे प्रदान करता है। कृषि और नवीकरण ऊर्जा से लेकर उद्यमिता और आवास तक ये पोर्टल कई क्षेत्रों और समुदायों में समावेशी क्रेडिट पहुंच को सक्षम बनाता है। जनसमर्थ पोर्टल का प्रभाव देश भर में इसकी ओर से दी गई व्यापक क्रेडिट सुविधा और इसके द्वारा संभव बनाए गए उद्यमशीलता के सफर दोनों में देखा जा सकता है। लॉन्च होने के बाद ये पोर्टल देश भर में संस्थागत क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक प्रमुख डिजिटल मंच के रूप में उभरा है। 1 जून 2026 तक पोर्टल के माध्यम से लगभग 54.10 लाख आवेदनों पर काम किया जा चुका है, जिनकी कुल राशि 3,00,951 करोड़ है। इसके साथ ही बैंकों ने 49,55,000 लाभार्थियों को लगभग 2,76,494 करोड़ की राशि के लिए डिजिटल मंजूरी दी है। ये कुशल डिजिटल क्रेडिट तंत्रों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। एकल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया जनसमर्थ पोर्टल विविध क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।
4: जनसमर्थ पोर्टल के 4 वर्ष, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे सामायिक चर्चा। वाचन स्वर था अनुराग प्राशर का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
5: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
6: सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से, राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, उन्हीं की आवाज़ में। ये गीत आप सुनेंगे मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
7: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है, पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक और मीका बिरक।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा हो

0: पत्रकार प्रताप सुमन जी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्ला अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल उमेश सरोज, आरती रेखा रितिका रिचा स्वीटी सागर रिया रीत ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और

समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने, और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरिसी, नईम इदरिसी और नदीम इदरिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो ज़रूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकीब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खान। वालिया का नाल राजा साहब से अभी मिलना है। इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खान आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। लो, कल की सी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल की सी ही बात लगती है।
3: कहिए कैसे आड़ा हुआ, कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो क्या करना है?
2: जी आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लक्ष्मण, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी बिल्कुल।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किया ही है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
5: सौंपो जी सौंपो।
3: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
5: साड़ी मदद?
3: बस यही कि आप, मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
5: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
3: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
2: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
3: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
2: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
3: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
6: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
7: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम कादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
6: क्यों, क्या हुआ?
7: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
6: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
7: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
6: उफ दादी जान,
7: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
6: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
7: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
6: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
7: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में ना आए।
6: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
7: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
6: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की? जरा बुलाइए उसे।
7: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीस की तरह।
6: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
7: तफसील तो यही है कि गुलाम कादर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
6: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादर को हमारे हुजूर में पेश करो।
4: जो हुक्म आ लीजिए। आलमपना, गुलाम कादर हाजिर है।
6: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल कि तू शाही हरम में।
8: हुजूर, हुजूर, रहम।
6: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हरामखोर की कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाए।

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहनशाह को मजबूर कर दिया। तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। कोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: नामवर, किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात से तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशीं कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
0: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मोहरें अच्छी तरह पहचानता हूं, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियाँ शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहम दिल शहंशाह की जान की बाजी लगा कर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: ओफ हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मनबहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

वाह, तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक तो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेहयाबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह है। अब किसी को भी मैं बच्चों के खरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा। और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी। आहा!

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। ये मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जहाँ बना हरम में जा चुके हैं।
1: उफ मियाँ शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहाँ पनाह को आगाह करना होगा।
0: हुजूर, बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो मैं जाता हूँ, अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहनशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां बना गुस्ताख ही माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां पना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है। मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखें क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलमपना, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर हो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पना के हुक्म के दे रहे, अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ दगा, तवारीख के सफ़े लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दिए।
3: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से साफ का पड़ा ही कहा है, गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में एतकाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
3: नहीं, लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आहा।

0: मंजूर के बच्चे नालायक लासबमान कहाँ छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: गद्दार, देता है कि छुरा पार कर दूं।
1: अभी सब देता हूँ हुजूर, अभी सब देता हूँ।
0: ला, निकल।

0: गलियों से भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची हैं।
1: हैं? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई हैं।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है। ये बला कैसे आन तक की?

0: 20 अजी। इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है सरदार इंगले।
1: श्रीमंत
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: जहां बना किले की ये दुर्दशा, बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां बना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीह, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शें, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।
1: खुदा हाफिज़।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहां पना, सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में, उस नीच कादिर के आंख, कान, नाक, होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, हाँ दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह ये शायद उसके होठ हैं। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूकें और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त।
2: नहीं
1: सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी। बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधव जी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियाँ। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। साईं के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जा रहा है। उनकी यादों के

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।

0: आया।
1: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा, वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई? राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया? क्या माहौल था? आपके घर का क्या माहौल था? और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
0: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज़ उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का? कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीज़ें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहाँ पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज़ से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं, रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहाँ पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहाँ चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा कि मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहाँ पर जाके वो जो अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर आने के बाद, फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे।
1: जी
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में।
1: जी
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहाँ पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी।
1: कुर्बानी,
0: तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
1: बिल्कुल।
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहाँ पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक है।
0: तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक वहाँ पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है।
1: जी
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइन्स। तो उन्होंने महबूब खान को 4 लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा,

0: ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी,
1: अच्छा।
0: ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुआ,
1: में हुई।
0: ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में,
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी,
1: अच्छा।
0: एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में,
1: हाँ।
0: और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहाँ बज रहा है,
1: हाँ।
0: वहाँ गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना।
1: जी।
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। लहरा

0: ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहाँ बज रहा है, वहाँ
1: हाँ
0: गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना,
1: जी
0: तो इनवाइटेड नहीं थे तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। लहरा

0: आएंगे तो आप प्रदीप जी को ज़रूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में।
1: अच्छा,
0: बोलते हम सब तो थे लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना। इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी
1: जी जी,
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए और नेचुरली भूल गए लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए
1: जी,
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहाँ पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा, ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं
1: जी।
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रहे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी।
1: बताइए,
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली।
1: जी, जी जी,
0: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के लिए होता है जी।
0: उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा, इसी गीत को सुनाएं।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ, हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं जैसे आप गाएंगे। फिर वहाँ पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहाँ पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूँगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी,
1: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला। और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
0: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
1: जी
0: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
1: जी।
0: ए मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
1: ये गीत सुन ले, ऐ मेरे वतन के
0: जी,
1: लोगों,
0: जरूर जरूर,
1: जरा आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरी वतन की लोगों।
1: जी,
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी,
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी? आप किस तरह का माहौल लगता था? कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी

0: से बात करना चाहें वो हमारे घर पे आते थे।
1: जी
0: तो ये नहीं है कि कभी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे,
1: जी
0: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
1: बिल्कुल
0: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास, और कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे हम लोग खड़े। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट दे के रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
1: जी
0: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे। हमारे घर पे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
1: जी
0: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए।
1: जी जी
0: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
1: जी
0: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
1: बिल्कुल
0: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते थे
1: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
0: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
1: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
0: हाँ हाँ अभी अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार।
1: जी
0: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज़्यादा आएंगे न्यूज़, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज़ आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहाँ रोज़ आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
1: इतनी भाषाओं के
0: हमारे वहाँ अखबार आते थे
1: और उसे पढ़ा जाता
0: और
1: था।
0: आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए।
1: जी
0: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज, उनका रोज का सवेरे का 6:45 बजे का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
1: हाँ,
0: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
1: तो घर में एक रेडियो था।
0: हाँ हाँ
1: जी
0: एक नहीं, 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
1: अच्छा,
0: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है, तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में,
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और हर कण कण
0: तो
1: में वो देशभक्ति
0: का जो जागरूकता थी ना वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों।
1: वाह क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं, हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए, ये दो चीज़ें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी, और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसे, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: फिल्मी
1: सबसे
0: दुनिया में
1: बढ़िया,
0: रहते हुए भी,
1: रहते हुए
0: उस
1: भी।
0: माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा
0: और
1: वो।
0: किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के
1: हाँ
0: बताइए?
1: हाँ नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूज़िक कंपोज करूँगा, बप्पी लहिरी ने।
0: जी
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊँगी, मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूँ, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे, जो आपको पसंद हो,
1: हाँ हम
0: जो
1: अभी,
0: फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था कविताओं का।
1: हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक
0: जी
1: दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
0: जी
1: तो उन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा था कि आज़ाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आज़ाद, तब कविता लिखी थी, उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आज़ादी मिली
0: जी
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लहलही विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब
0: वाह
1: नवयुग में खुशी से आनंदित है
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: हमको उस वक्त आज़ादी मिली
0: आजादी मिल
1: थी।
0: गई।
1: और आप अगर सुने, एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: भाईचारा यही
1: ये
0: पैगाम
1: वो
0: हमारा।
1: ही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं,
0: चलाएं
1: छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क
0: फर्क न
1: नहीं रह
0: रहने
1: जाए।
0: पाए।
1: तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश
0: पॉपुलर
1: के
0: हुआ
1: लिए
0: था
1: पॉपुलर है,
0: देश।
1: और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा
0: ये
1: और कुछ नहीं,
0: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते
1: ठुकरा नहीं
0: हैं,
1: सकते।
0: भुला नहीं सकते हैं,
1: हाँ
0: झुठला नहीं सकते
1: हाँ
0: हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम
1: ये
0: सुन
1: गीत
0: लें?
1: ये जरूर बजाइए, बहुत
0: जी
1: अच्छा गीत है।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाएं और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति
1: मिली हमको,
0: जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आज़ादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आज़ादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आज़ाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना मेरे
1: बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से? और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
0: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
1: हर एक लाइन सुनिए आप
0: जी।

0: काल के।
1: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही हैं और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
2: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाक्या हुआ था
1: जी,
2: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलता मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपी नैयर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं, प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुग्यानो ने की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण और उर्वरक जैसी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्ष के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों तथा वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन आज पूरे हो गए। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले शनिवार को ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट गोस्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट गोस्वामी का राजौरी जिले में अभियान के दौरान एक गहरी खाई में गिरने से निधन हो गया था। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। न्यू चंडीगढ़ में भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. India-Indonesia Joint Commission meeting concluded in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. In a social media post, Dr. Jaishankar said the comprehensive strategic partnership between both nations has witnessed a strong growth in recent years. He said the substantive discussions were held on political, defence and security, maritime and shipping, trade, fintech, health, pharmaceuticals, fertiliser, critical mineral, as well as tourism, education and cultural cooperation. Both leaders also exchanged perspectives on regional developments, advancing our multilateral coordination and deepening Indian-ASEAN ties. Earlier in his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of establishment of bilateral ties last year. Union Home Minister Amit Shah has called for a close watch on financial and property transactions along international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern states. More from our correspondent.
3: Home Minister also directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
4: For Akashvani News, Shuman Bhattacharjee, Agartala.
2: In West Bengal, 4 bodies of a family have been recovered from Teesta River near Rambhi of Kalimpong district after a 48-hour search operation this morning. The deceased family was travelling from Gangtok to Siliguri in a car. The vehicle went missing on the National Highway 10 near Rambhi alongside Teesta River on Friday afternoon. The NDRF, SDRF, West Bengal Police and Teesta River rescue teams helped in the search operations. Rescue teams recovered vehicle and 4 bodies locked inside the car. Today is the last day to submit applications for verification of issues observed and revaluation of answers on the post-result services portal for Class 12th examination. In a social media post, the Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passed away in Kochi yesterday. He was undergoing treatment at a private hospital. In a career spanning 3 decades, he acted in around 350 films. By presenting humor-centric characters in his unique style, Saleem Kumar gave them a distinct dimension. He won the National Film Award for Best Actor and the State Film Award in 2010. Prime Minister Narendra Modi expressed sorrow at the passing away of veteran actor Saleem Kumar. The foreign portfolio investors offloaded Indian equities worth 42,927 crore rupees in the first week of June, remaining net sellers across all 5 trading sessions during the week. With this, the total FPI outflows from the equity market have crossed 2.67 lakh crore rupees so far this year, according to depository data. In French Open tennis today, Germany's Alexander Zverev will face Italy's Flavio Cobolli in the men's singles title clash. World number 3 Zverev will be playing his fourth Grand Slam final of his career. He will face 14th-ranked Cobolli, who is featuring in his first Grand Slam final. Both players are chasing their maiden Grand Slam title. The India Meteorological Department has forecast widespread rainfall across the country for the next 2 to 3 days as southwest monsoon advances while heatwave conditions continue to persist in parts of north and central India. Central Arabian Sea, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, parts of Telangana, southwest and north Bay of Bengal have favorable conditions. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भजन फिल्मों से। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुहानी सी इस शाम के सायंकालीन प्रसारण में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं सूर्य फिल्म के इस भक्ति रचना के साथ।

अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज व साथियों की आवाज़ों में गाया ये सूर्य फिल्म से भक्ति रचना भजन फिल्मों से आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही सुषमा कमल बरोट हेमलता के मिले जुले स्वरों में।

ये भक्ति रचना आपने सुनी हरिदर्शन फिल्म से। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अवतार फिल्म से।

किशोर कुमार व साथियों को अभी आपने सुना अवतार फिल्म में, भजन फिल्मों से आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति दुर्गा माँ फिल्म से।

एस जानकी व साथियों की आवाज़ों में गाए इसी भजन के साथ हमारा आज का भजन फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भजन फिल्मों से कार्यक्रम FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज वीकली पल्स के बारे में बातचीत की जाएगी।

युवा मंच कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को, आपके दोस्त का प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे और होंगे और खुश होंगे। और युवा साथियों, आपको जैसे पता ही है कि शाम के समय हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच लेकर, और इसमें हम खोलते हैं जानकारियों का पिटारा। और जानकारियां तो वैसी ही हैं, लेकिन अंदाज कुछ हमने नया जो है वो अपना लिया है। तो आज है रविवार और आज के दिन होता है वीकली पल्स, और इसमें हम आपको अपडेट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में और लोकल कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। तो युवा मंच कार्यक्रम में आज यही क्रम रहेगा। तो ज़्यादा इंतज़ार आपको ना करवाते हुए, हमें पता ही है कि हमारे युवा साथियों को सबसे पहले इंतज़ार होता है म्यूज़िकल ब्रेक का। बिल्कुल युवा साथियों, हम आपका पूरा ख्याल रखते हुए सबसे पहले लेते हैं म्यूज़िकल ब्रेक, और उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में कार्यक्रम युवा मंच की कुछ जानकारियाँ लेकर।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। युवा मंच कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और आज मैं हूँ आपके साथ वर्षा कटोच। चलिए, हमने पहले भी बात की थी कि युवा मंच कार्यक्रम का बदला हुआ जो स्वरूप है उसमें आज हम बात कर रहे हैं वीकली वर्ल्ड्स की, और इसमें आज हम आपको थोड़ा सा लोकल अपडेट और थोड़ा सा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले करते हैं लोकल बात। धर्मशाला के कोतवाली बाजार में एक विदेशी नागरिक द्वारा भारी हुड़दंग मचाने की घटना सामने आई। इस व्यक्ति ने सब्जी विक्रेताओं का सामान फेंका और पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार किया। बाद में पुलिस ने उसे अपने हिरासत में ले लिया। जैसा कि आपको विदित ही है कि गर्मियों का सीज़न है और पर्यटकों की तो यहाँ भारी भीड़ रहती है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, वो चाहे मनाली हो, शिमला हो, धर्मशाला हो। तो धर्मशाला और मैक्लोडगंज के अधिकांश होटल इस वीकेंड 100% पैक हैं। तो युवा साथियों, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं कार्यक्रम युवा मंच लेकर और कुछ जानकारियां लेकर। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सभी युवा साथियों का हम फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस समय आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है युवा मंच। और इसमें आज हम बात कर रहे हैं वीकली पल्स की और उसमें हम आपको जानकारियां देंगे कुछ लोकल और कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की ताज़ा तरीन कि गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। पिछले 3 महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़े हैं, इससे आम जनता के रसोई का बजट प्रभावित हुआ है। ये तो आज की अपडेट है। ऑयल इंडिया को अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 15 किलोमीटर दूर 1900 मीटर से अधिक की गहराई पर प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है। दोस्तों, बातें और जानकारियां हम जारी रखेंगे लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: युवा साथियों, कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम पहुंच चुके हैं और अब बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में है। भारत ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की, जिसके जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने 113 रनों पर 5 विकेट खो दिए हैं।

युवा साथियों, अब घड़ी की सुइयां जो हैं वो ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो चलते चलते बुज़ुर्गों की एक सीख हम आपसे ज़रूर साझा करना चाहेंगे कि हम कभी भी जब दूसरों पर एक उंगली उठाते हैं तो याद रखिए युवा साथियों, चार हमारी तरफ होते हैं। तो किसी की भी तरफ, किसी भी बात पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा सोच समझ लीजिए। और मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से 103.4 MHz पर आज शाम को शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी।

शाम 6:06 का प्रसारण समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरान, जो कि महिलाओं के लिए विशेष रहेगा। रात्रि 8 बजे सुनिएगा अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। रात्रि 8:30 पर हम प्रसारित करेंगे देशगान। कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज रात्रि 9:15 पर निर्माता निदेशक सजीव गढ़वी द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ गीत आपको सुनवाए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे व रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, शाम 7:10 पर विशेष कार्यक्रम वंचितों को वरीयता, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, रात्रि 10 बजे रविवार सेरीय संगीत सभा भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएगी। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
3: हाँ।
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और। नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में कटौती करने संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की घोषणा की है। शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधायकों और मंत्रियों को 3 महीने के एरियर सहित जुलाई महीने में पूरा वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए वित्त विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे हैं।
1: जो चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर्स है, जिनकी सैलरी को और जो MLA हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो डेफर की गई थी सैलरी को, उस डेफरमेंट की जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको मैंने विड्रॉ कर दिया। अगले महीने से उनका एरियर होगा वो भी मिलेगा और जुलाई में उनको पूरी सैलरी में मिलेगी, एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर को छोड़कर। अच्छी तरह सुधार हुआ है और अच्छी तरह सुधार से बढ़ रहे हैं। हमारा राजस्व जो हमने बंद किया, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करे, उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने HRTC के पेंशनरों को हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम को सरकार की ओर से 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार निगम को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भत्तों की अदायगी के लिए 30 करोड़ रुपए देगी।
1: सरकार ने ये फैसला किया है कि 7 से 10 तारीख के बीच में HRTC की जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन मिल जाया करेगी और वो पेंशन के लिए उनका डिपार्टमेंट जो है HRTC जो है उसको हम 20 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे। टोटल पेंशन का खर्चा 23 करोड़ है, 3 करोड़ HRTC जो अपना रेवेन्यू होता है उससे दिया करेगी, ये हमने उसको कहा है। तो 20 करोड़ रुपया मैं मेडिकल रिवर्समेंट के लिए उनको दे रहा हूँ ताकि उनका पूरा मेडिकल रिवर्समेंट हो जाए।
0: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। उन्होंने चंबा जिले के खजियार में बूथ स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मतदाताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदान को लेकर अनेक सवाल पूछे। ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि देश में 12 लाख मतदान केंद्रों पर काम करने वाले बूथ स्तर के अधिकारी चुनाव आयोग के धरातल पर काम करने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपने जीवन में प्रत्येक चुनाव में मतदान करने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चंबा जिले के मतदाता भविष्य में होने वाले चुनावों में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करें।
2: इतना बड़ा लोकतंत्र है आपका देश भारत। जिस चुनाव आयोग ने, अधिकारियों ने, हमारे कलेक्टर साहिबान लोगों ने ये आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार कौन सी? भारत की सरकार। 65 लाख लोग काम करते हैं।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रश्मि रथी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय रश्मि रथी पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि थे और उनके समानता व देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी दिनकर की रचनाओं में निहित शाश्वत मूल्यों को आत्मसात कर देश के उज्ज्वल भविष्य की ध्वजवाहक बनेगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि ये संगठन राष्ट्र प्रथम की भावना, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के संस्कार अपने कार्यकर्ताओं को देता है। इसमें जयराम ठाकुर ने शिमला के विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान वर्ग कार्यक्रम में भी भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी कम है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
4: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान, बागवान व पशुपालक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे हैं। किसान कन्ने बागवान पाइया जो जोधा राम दी राम राम। किसान साथी हो टाली बिच मेरे कन्ने आज है ना सन्नो ताई
1: जी जोधा पाई तुसा जो भी राम राम कन्ने सारे श्रोतियां जो भी राम राम। संजय दी किसान साथी हो हाँ टियाले पर दोनों पुजी चुके हो ना कन्ने मैं ही आए तो बढ़िया देर आदे पर मैले थोड़ी देर चलो टियाले दी जड़ी जिम्मेदारी से निभानी निभानी पर हाँ अपनी भी गप्पा सप्पा लाई लिया।
0: सही गल है कन्ने दिखा अल दिख रहा हूँ थोड़े तोले तोले भी आई जाते ना
1: अपना रेडियो सेट है ना इसे संजय मैं बोलती 4-5 बजे से दूंगा टाइम मैं शुरू करी दे
0: बस कने कहीं तो खेती बाड़ी दे सोगी सोगी ना खेतों च भी रखे होंगे
1: हाँ चलते फिर
0: भी सुन।

0: रहते, गाने भी सुनते रहते, कम्मा भी करते रहते, है ना जी। कन्नै दिक्खा अज असां जानकारी देनी है अपने किसान भाइयों जो कि जियां खेतीबाड़ी करते, मुख्य फसल मारी गेहूं दी, धान दी रहिंदी है, सब्जियां भी यहां उगांदे ने। इससे सोगी सोगी असां और भी छोटे छोटे जिहड़ा ऐसा है, जियां कोई मुर्गी पालन करते, कोई मछली पालन करता, कोई खरगोश पालन करता, कोई भेड़ बकरी पालन
1: ते
0: करता, ना
1: कुछ
0: जी।
1: करने वाले मतलब काफी कम है जेडे अहां दे किसान साथी खेती करने करने करी सकदे।
0: हाँ, कन्नै अहां दा ये मकसद रहिंदा कि असां तेनां जो सारी जानकारी देने ताकि अहां दे किसान भाइयों की आय जिहड़ा ऐसा बधी सके।
1: बधी सके
0: तो अज असां अपने किसान भाइयों गल करनी है कि मुर्गी पालन जिहड़ा ऐसा असां कियां कर सकते हैं। मुर्गी पालन किसान साथियों असां जिहड़ा सा है घट लागत विच जिहड़ा ऐसा है शुरू कर सकते हैं। कन्नै इस विच असां अंडे कन्नै मांस दुनी ते जिहड़ा ऐसा है अपनी आय जिहड़ा ऐसा
1: जी जी
0: आमदनी जिहड़ा ऐसा प्राप्त करी
1: करी
0: सकते हैं।
1: सकदे
0: हाँ जी, कन्नै दिक्खा इस क्या होंदा ना कि असां जो सारे पहले ये देखना पौना कि असा अंडे का ज़्यादा कारोबार करना है कि मांस का, जो दोनों कारोबार जो सौगी होंगे,
1: बिल्कुल
0: कन्नै दुनिया की मुर्गियां भी कन्नै नस्लां भी जो है अलग अलग
1: अलग
0: होंगे।
1: अलग होंदियां।
0: हाँ, जियां लेयर मुर्गी जो होंगी सै अंडे उत्पादन वास्ते होंगी, कन्नै ब्रोलर जो होंगी सै मांस वास्ते होंगी।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: जी,
0: जी,
1: कन्नै इस दे कन्नै कन्नै जी देसी मुर्गी पालन भी हां दे किसान साथी या भाई कोई करना चाहते हो ना तो तिन्हें भी सै मतलब देसी तरीके ने भी कर सकते। इस विच जियां कड़कनाथ की गल करा,
0: हाँ
1: ग्राम प्रिया होइया या फिर स्थानीय जड़ी हाँ ग्राएं की देसी नस्ल होंगे तिन्हें इसे पाली सकते। कन्नै इन्हां दे अंडे की जो पाई एक खासियत
0: मांग
1: होंगी
0: बड़ी।
1: भी जरा कि मौसम ठंडा हुआ ना तो 20 कन्नै 25 रुपये अंडा बिकी जाता।
0: हाँ, कहने देखा तो हाँ कड़कनाथ की गल की, बोलते कि इस दे जरा अंडा होंदा ना सै तो इसकी मांग बड़ी बड़ी बाजार ज्यादा रहती, कहने
1: मास
0: मांस
1: दी
0: की भी
1: भी
0: तो
1: हाँ
0: मांस की भी बड़ी मांग है। कहने बोलते इस च कोई भी बीमारी हो हमारे शरीर की जरा इम्यूनिटी पावर जो बढ़ाती है, लेकिन जो यहाँ के रोग ने लड़ने की शक्ति होंगी
1: इसे
0: ना तो
1: बढ़ाता
0: इसको बधाई दी, है ना जी। तो असा जो जरा है सै ये जरूर जरा सा असा जो चयन करना चाहिए कि असा कुंडे जरा सा पालन करना है।
1: कने दिखा जलो एक काम तो हाँ व्यवसायिक तौर पर आमदनी कमाने वास्ते करना ही है तो कुछ मुख्य चीजा ऐसी होंगी तिना दी तुहें ज्यादा जरूरत पौंदी।
0: जी
1: जी गल करा जगह दी तो जगह का जरा चुनाव ऐसे बिल्कुल सही होना चाहिए। जेड़ा तुम शेड बनाना है या फार्म बनाना है तीस दी जगह ऐसी सुनिश्चित होना चाहिए जितू पानी का मतलब जमाव ना हो है,
0: हाँ
1: पानी
0: कन्नै
1: ना रुके
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, कन्नै सनो तो दिखा सुखी जगह होना चाहिए, कन्नै ऊंची जगह पर हुआ है ना तो ऊंची जगह पर पानी का जमाव आपू ही नहीं होंदा।
1: कने धूप भी सीधी
0: हाँ,
1: बजे
0: तो भी सीधी होंगी साफ पानी, कन्नै बिजली की सुविधा भी होगा जिंक तुम दस्या, कन्नै शेड जो होंगे ना तो इस हवा कन्नै रोशनी दोनों जरा सा होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: हाँ जी,
1: कने जे खाने की गल करिए तो मुर्गरियां जड़े तिना दा उचित आहार है, खान पीन है, तिना दी फीड है, तिदा भी बड़े अच्छे तरीके ने बंदोबस्त करना पौंदा। कने मुर्गियां जो अच्छे विकास वास्ते तिना जो छलियां हुई बाजरा सोयाबीन कने खल है इन्हें दे दे जड़े विटामिन मिनरल्स हैं ये तिना संतुलित आहार च देना बड़ा जरूरी
0: हाँ
1: है।
0: चारा दाना जरा सा तिना संतुलित मात्रा रखनी। कन्नै जित्थू तुसां शैड बनाना ना किसान साथियों, जे गर्मी बारिश कन्नै ठंड ते बचाव होना चाहिए, फर्श पर लकड़ी का बुरादा जरा सा फेंकी देना, कन्नै भूसा या चावल दी जरा सा पू हुंदा ना सा बिछाई देना, कन्नै रोज जरा सा सफाई करने की जरूरत जरा सा हुंदी है।
1: बिल्कुल तो हाँ बढ़िया सफाई वाली गल गलाई कजो कि चलू इं दिखा हाँ 5-7 ठार पाले उन तो कई बार हाँ नहीं पता लगता जितू फार्मा च हजारा लखा के हिसाब है मुर्गी पालन कितने होंगे तो तितू कई रोग बीमारियां भी आई जाए जी। मुख्य बीमारी है रानी खेत
0: जी
1: ये ज़्यादातर मुर्गियां पर आक्रमण कर दी। कने इसते क्या होंगे कि कई बार हजारा के हिसाबे ने मुर्गियां जड़ियाँ सह मरी जाए
0: जी
1: तो इसते अहाँ बेचारे किसान भाइयों या युवा जड़े कम जो करा देने लागत लाई कितना काम किते हैं तो तिन्हें भारी नुकसान भी चुकना पौंदा कई बारी।
0: सही गल है।
1: तो इस वास्ते समय रहिंदे तिन्हां दा टीकाकरण या दवाइयां जड़ा मिलदी हैं सो जरूर तुहां तिन्हां दे खाने विच शामिल करा।
0: बिल्कुल जी, कन्नै मुर्गियां जो बचाने वास्ते टीकाकरण तो दस्या से टाइम पर होना चाहिए
1: हाँ जी
0: जिससे कि रानी खेत रोग जड़े से दिन जो घट लगे, है
1: कने
0: ना जी।
1: सबसे बड़ी गल भी साफ सफाई रखे तो शायद रोग ना भी हो है।
0: कन्नै दिखा रही अंडे की गल, अगर तुहाड़े वाल देसी नस्ल की मुर्गा है ना
1: हाँ जी
0: तो इस दी अंडे की तो तुहानू बेचने की भी जरूरत नहीं, घरे ले जाने
1: करे
0: लोग
1: ले जाते लोग
0: धोप्यो नहीं मिलते, है ना जी।
1: जी
0: देसी अंडे वाले कन्नै देसी मुर्गे वाले तो धोप्यो नहीं मिलते, अगर तुहाड़े लोगे ना तो तुहानू आपू तोपना,
1: जी
0: कन्नै अगर तुहाड़े ब्रोलर है या दूसरा मुर्गा है तो इस वास्ते तुहाड़े जे अंडे के जेहड़े स्थानीय दुकानों से बेची सकते, होटलों कन्नै बाजारों में भी तुहें बेची सकते, कन्नै ब्रोलर मुर्गियां 6 ते 8 सप्ताह के बाद बिक्री वास्ते जेहड़ा सा तैयार हो जाएं ने। तो इस
1: जी
0: तरीके जेहड़ा सा अपना एक कारोबार मुर्गी पालन का कर
1: करी
0: सकते हैं।
1: सकते। कने अहां यही सारे ने गल करनी है भाई जरूर तुहां अगर खेतीबाड़ी करा दे तुहां वल जमीन ना बाहने वाली है कन्ने कन्ने थोड़ी बहुत जमीन ऐसी जिहा तुहां इस्तेमाल नहीं करा दे तो तिथु मैं बोलती तुहां मुर्गी पालन मछली पालन या कोई सूअर पालन कुछ भी काम तुहां अगर करी सकते हैं तो जरूर करा।
0: बिल्कुल जी,
1: जिससे तुहां दी आमदनी खेतीबाड़ी करने करने दो पैसे तुहां ज़्यादा आई आन।
0: सही गल है, तो सानू तो यही दिखा असा सुनी है जानकारी कने दिखा, जानकारी तो बढ़िया थी लेकिन हूँ जरा सुनना एक लोक गीत।

0: जी किसान साथियों प्यारे दे लोक गीत तो सुनिया कने
1: तो सनो तो आई दिखा मथे जो बिंदलू अता लाना है ना सोगी सोगी असा जड़ा असा अगर मथे जी बिंदलू भी लांदे रहेंगे ना तो दाना दे लाने दा टाइम भी
0: निकली जाना कने कमरे याने बिंदलू लगना
1: हां करे टाइम दी जानकारी देना मारा भी फर्ज बनदा भाईया
0: है ना
1: जी की दान दी रुपाई असा किया करनी है
0: जी तो सही वक्त पर सही जानकारी मिली आ तो मैं बोलदी फायदा ही हुंदा
1: हां तो वा सुन दे जानकारी।
2: जैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि किसी भी फसल की अगर उन्नत विधि से खेती बाड़ी की जाए तो हमारे किसान भाई को ज्यादा पैदावार मिल सकती है और जिससे उसको ज्यादा ज्यादा फायदा हो सकता है। आज हम धान की रोपाई उन्नत विधि से कैसे की जाए इस संबंध में बात करेंगे। तो इस संबंध में जानकारी देने हेतु आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन पठानिया जो कि चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शस्य विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि धान की रोपाई के क्या क्या तरीका का
3: अगर हमने SRI विधि से लगानी है। एक और विधि है जिसको हम फसल सघनीकरण विधि बोलते हैं। SRI विधि जब ये पौधे लगाने हैं तो 3 सेंटीमीटर से 11 पौधा नहीं लगाना है, एक

0: रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी है। और अगर हम लेट हो गए हैं किसी कारण बस लेट हो गए हैं या मतलब कि पानी की बहुत जगह पानी नहीं मिलता किसान भाइयों को समय पर, कुल वगैरह जो कुल लेट आई है मान लिया, तो हमने उसको 15 सेंटीमीटर ही पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी भी 15 सेंटीमीटर ही रखनी है। और दो से तीन पौधे जो है वो एक जगह हमने लगाने हैं और बहुत गहरा नहीं उसको लगाना है, 3 सेंटीमीटर से गहरा इस विधि में नहीं होना चाहिए। और जब हमने लगा छोड़ दे हैं पौधे तो 5 दिनों तक हमें पानी की आवश्यकता, मतलब लगातार पानी की आवश्यकता
1: खेत में जो खड़ा रहना चाहिए 5 दिन तक
0: जी। और उसके 5 और 10 दिनों के बाद फिर हमने उसमें फिर से दोबारा देखना है कि जहाँ जहाँ पौधे मर गए हैं तो पौधे जो है वो दोबारा लगाने हैं
1: जी। तो इसके अलावा जैसे दूसरी फसलों को जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है
0: जी,
1: तो इसमें जो है कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं जरूरी हैं, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश
0: जी। प्रायः हम इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश ही डालते हैं, तो उसके लिए हम यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डाल सकते हैं। तो एक कनाल में अगर हम बात करें तो 8 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 2.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश सिंचित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त रहती है। और अगर बरानी क्षेत्र है तो मात्रा हमें कम करनी चाहिए
1: जी। बरानी क्षेत्रों के लिए कितनी,
0: बरानी क्षेत्रों के लिए मतलब कोई इसका 60% हमें कर लेना चाहिए
1: जी। तो अब इसमें जो है जो बरानी क्षेत्र है जी, वहाँ का क्या तरीकाकार होना चाहिए?
0: बरानी क्षेत्रों पे क्योंकि ये वर्षा पर ही निर्भर करते हैं, तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतनी इस समय पर ही हमें बुआई कर लेनी चाहिए, परंतु यदि बारिशें ठीक हो जाती हैं तो फिर हमें 15 से 30 जो जून है उसी में इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। मतलब जैसे ही बत्तर आ जाता है, मतलब खेतों में पानी अच्छा आ जाता है तो हमें
1: इसमें रासायनिक तत्व या जो देसी खाद है वो किस मात्रा में डालनी होती
0: तो है? इसमें पहले तो हमें ये देखना है कि जो गोबर की गली सड़ी खाद है वो हमें डाल लेनी चाहिए। 10 से 15 जो है वो क्विंटल हमें गली सड़ी गोबर की खाद जो है हमें वो डालनी ही डालनी चाहिए। गोबर की खाद जितनी अच्छी होगी उतना उसका बड़े फायदे रहते हैं। जैसे पानी की
1: तो ये खाद जो है कैसे डालनी है, खेत तैयार करते हुए डालनी है,
0: जैसे
1: हमने बीज की बुआई करनी है उसी वक्त जो है
0: जो हमारी देसी खाद है उसको हम जब खेत तैयार करेंगे, गली सड़ी देसी खाद है तो उस समय हमने मिट्टी में उसको फेंकना है और जब फिर हल चलाते हैं तो ये मिट्टी में मिक्स हो जाती है, तो जब ये मिश्रित हो जाएगी तो और ज्यादा फायदा होगा। परंतु जो मैंने दूसरी खाद रासायनिक खाद बताई है वो जो रासायनिक खाद है वो हमने बुआई के समय हल्के पीछे पीछे डालनी है, पहले खाद डालेंगे ऊपर बीज डालेंगे, तो क्या होगा कि जैसे ही जड़ें जो हैं वो खाद को लेती हैं और जो फास्फोरस और पोटास खाद है वो मिट्टी में चल नहीं सकती है, तो जड़ों के द्वारा ही पौधा इस खाद को लेता है, तो इसलिए पहले मतलब नीचे खाद रहनी चाहिए और उसके ऊपर
1: जो रासायनिक खादें
0: हैं उनका यही होता है। परंतु जो हमारी नाइट्रोजन खाद है वो चल भी सकती है मिट्टी में, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि आधी रासायनिक जो नाइट्रोजन है खाद है वो बुआई के समय डालनी है, यानी अगर सिंचित क्षेत्र है तो जो मच करते हैं हम उस वक्त डालनी है लास्ट जो मच करते हैं, और जो बारानी क्षेत्र है उसमें बुआई से पहले डालनी है। और जो आधी
1: खेत की तैयारी कैसे करनी होती है, खेत की तैयारी का तरीका कार भी होता है जैसे
0: खेत की तैयारी, और इसमें जो एक घास बड़े आते हैं बरसात में ना, तो वो भी किसान भाइयों को ख्याल रखना चाहिए। जो रबी का मौसम है उसमें घास कम आता है क्योंकि बारिशें कम होती हैं, परंतु खरीफ के मौसम में घास ज्यादा आता है, तो घास मारने के लिए भी प्रबंध करना चाहिए। और जो खेत तैयार करने हैं उसके लिए हमें पहले 2 जुताइयां जो हैं वो अच्छे ढंग से देना चाहिए, उसके बाद उसमें मई लगा लेना चाहिए ताकि जो बिक्कड़ वगैरह होते हैं वो जो
1: पूरे
0: भुरभुरे हो जाए और मिट्टी जो है वो भुरभुरी जुमाव के लिए अच्छी मिट्टी हो जाए
1: जी।
0: तो जैसे मैंने बोला कि हमें घास भी मारना है, तो घास मारने के लिए 2 तरीके हैं, या तो घास उखाड़ा जाए, तो घास उखाड़ने के लिए ज्यादा लेबर लगती है, अब अपने पास लेबर की अवेलेबिलिटी महंगी भी है, तो उसके लिए मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि हमें जो रसायन हमारे पास हैं वही उसका ही छिड़काव कर लेना चाहिए, चाहे वो सिंचित क्षेत्र है चाहे असिंचित क्षेत्र है। तो वहाँ एक ब्यूटाक्लोर करके दवाई आती है, तो वो तरल पदार्थ अभी है उसका, तो उसमें 1 बीघे के लिए 240 मिलीलीटर दवाई जो है वो हमें डालनी चाहिए, और अगर बीघे में हमने दवाई डालनी है तो 4 पंप जो है वो पानी के उसमें लगेंगे, तो 1 पंप में जो है वो 60 मिलीलीटर दवाई डाल देंगे और उसको 1 बीघे के 4/4 हिस्से में हम छिड़काव कर लेंगे
1: जी। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश तत्व जो है अक्सर दिए जाते हैं हमारे यहाँ फसलों को, लेकिन कुछ पंजाब के साथ लगते हुए जो इलाके हैं हमारे जैसे ऊना और कांगड़ा के हैं तो वहाँ जो है कुछ जिंक की कमी भी देखी
0: जी।
1: तो जिंक जो है हमें कितने सालों के बाद जो है
0: ऐसा है कि जब किसान भाइयों को पता लग जाए

0: जिंक की कमी आ गई है, तो जो उसमें मिड रिब बोलते हैं जैसे पत्ता है उसको बीच से पीला पड़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें समझ जाना चाहिए फसल है उसमें जिंक की कमी आ गई है
1: जी। ये तो बाद की बात हुई कि जब जो है जिंक की
0: जो हमें जिंक सल्फेट,
1: इससे पहले जो है अगर खेत में जिंक सल्फेट
0: नहीं, जैसे हम जिंक सल्फेट जो है वो हमें एक कनाल में एक किलोग्राम के हिसाब से डाल देना चाहिए। वो ऐसा है कि जिन क्षेत्रों में अगर वो आ जाती है, मतलब पता है कि
1: कमी
0: क्षेत्रों में कमी आई होती है, तो जैसे इस साल आपने डाल दिया तो फिर नेक्स्ट ईयर हमें नहीं डालना चाहिए, फिर जब जब सिम्टम आ जाए तभी हमें डालनी चाहिए।
1: जिंक सल्फेट भी कर सकते हैं,
0: हाँ छिड़काव भी कर सकते हैं। एक किलोग्राम अगर हम एक कनाल में डालेंगे तो इसमें कमी आएगी ही नहीं, तो एक हेक्टेयर के लिए 25 किलोग्राम
1: से पहले डाला जाए।
0: हाँ जी, हाँ जी, जिंक सल्फेट हमें
1: उसका नुकसान तो नहीं,
0: उसका कोई नुकसान नहीं है।
1: तो उसके बाद जो आता है डॉक्टर साहब, के बरसात की फसल है, कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बहुत होता है।
0: हाँ जी,
1: तो इसमें धान फसल में कीड़े और बीमारियां कौन कौन सी लगती है?
0: हाँ जी, जो कांगड़ा से और पालमपुर की बेल्ट है इसमें पत्ता लपेटे का कीड़ा जो है वो बहुत आजकल आ रहा है, परंतु इससे पहले भी जो इन फसलों में जो कीड़े आते हैं उसमें से टिड्डे आपने देखा होना, या काला भृंग आता है, या धान का बग बोलते हैं वो आता है, या हिस्पा आता है, और आजकल मैंने आपको बताया कि पत्ता पेटे का कीड़ा जो है वो आजकल बहुत आ रहा है, और एक तना छेदक भी आता है। तो ये जो है इंसेक्ट जो जिसको बोलते हैं, ये वो इन क्षेत्रों में धान में काफी रहते हैं
1: जी। तो इनसे बचाने के लिए फसल को जो है कौन सी दवाई का इस्तेमाल?
0: एक क्लोर पायरोफोस दवाई आती है, अगर क्लोर पायरोफोस दवाई जो मिट्टी में कीड़े होते हैं तो अगर उसमें उसे मिट्टी में अगर हम उसको मिलाते हैं तो तब मिट्टी में कोई कीड़े नहीं आते हैं, परंतु अगर धान के खेतों में अगर कीड़े आ गए हैं,
1: तो
0: फसलों में आ गए हैं, तो क्लोर पायरोफोस जो दवाई है उसको 1250 मिलीलीटर एक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें डाल देनी चाहिए। यानी मैंने आपको पहले बताया कि एक जो हेक्टेयर में अगर हमने छिड़काव करना है तो 750 लीटर जो है वो पानी की आवश्यकता पड़ती है, और अगर एक बीघे में आपने करना है तो हमें 60 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और कनाल में करना है तो 30 लीटर आ गया। तो अगर 60 लीटर की पड़ती है एक बीघे में, तो उसी हिसाब से 4 पंप लगते हैं, तो पंप में अगर हम 1.5 से 2 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर के हिसाब से हमें उसमें मिला लेनी चाहिए, यानी 15 लीटर का पंप होता है ना, 15-16 लीटर
1: जी,
0: तो उसमें 25 मिलीलीटर अगर हम दवाई डाल देंगे तो हमारा काम चल जाएगा
1: जी।
0: तो ये सारे
1: कीट है उनका सफाया हो जाएगा,
0: सफाया हो जाएगा।
1: तो इसके अलावा बीमारियां कौन कौन सी जो धान फसल में लगती हैं?
0: बीमारियां भी, एक तना सड़न रोग आता है, इसमें जीवाणु झुलसा रोग आता है, ब्लास्ट भी आ जाती है, तो बीमारियां भी धान में रहती हैं। वेबिस्टीन भी है, हमारे इंडोफिलम 45 आता है, वो है, 2-3 और रसायन है, वो हमने जितना लगाया हुआ है धान लगाया अपने उस हिसाब से हमें छिड़काव कर लेना चाहिए
1: जी।
0: समय
1: कितने लीटर पानी में जो है कितने मिलीलीटर दवा डालनी चाहिए?
0: जैसे ये बेबिस्टीन की बात कर रहा था, तो बेबिस्टीन जो है वो हम बाद में 1 ग्राम बोलते हैं भी 1 लीटर पानी के हिसाब से डालना चाहिए, जब हमने उसमें बीज में मिलानी है तब तो मैंने बोला ना 2.5 ग्राम डालनी, परंतु अगर बाद में छिड़काव करना है तो 1 ग्राम बेबिस्टीन, और अगर 2-3 45 हमने छिड़काव करनी है तो इंडोफिलम 45 हमने करनी है, तो उसकी 2.5 ग्राम मात्रा जो है वो 1 लीटर पानी के हिसाब से चाहिए। यानी आप किसान भाई कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक मैंने कनाल के लिए बोला कि 2 ही पंप चाहिए, और 1 पंप में हमने 15-16 लीटर पानी आता है, तो अगर बेबिस्टीन डाल दी है तो 15 ही ग्राम हुई, M45 डाल दी है तो वो फिर 35-40 ग्राम दवाई जो है वो हम डालेंगे और उसका छिड़काव करेंगे
1: जी। तो अगर हमारी फसल स्वस्थ है तो इसमें जो है कितनी पैदावार मिल सकती है जो अलग अलग किस्में है हमारी?
0: हाँ,
1: जो की हुई
0: जो असिंचित क्षेत्र हैं
1: जी,
0: और अपने BL धान 221 और जो सुकारा धान 1 बताया, तो इसमें किसान भाई जो है वो 25-28 क्विंटल तक ले सकते हैं, और अगर जो हमारी जो दूसरी किस्में जैसे RP 24-21 है, या फिर HPR की 3-4-10-68 है, या 21-43 है, तो उसमें हमें 35 क्विंटल तक जो है वो
1: पैदावार
0: एक हेक्टेयर से हम ले सकते हैं। जो बासमती के जो किस्में हम लगाते हैं उसमें थोड़ा जो है बासमती जो है वो इससे कम पैदावार देती है, परंतु वो भी हमें 27-28 क्विंटल तक बासमती की भी जो है वो आ जाती है, अगर हम सार अच्छे ढंग से इसकी खेती करेंगे तो
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे सुनने वाले किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तसन्नताई
2: जी
0: देखा डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी थी कि या समझो रुपाई कालू करना चाहिए किया करना चाहिए कने किस विधि ने करना चाहिए ना जी
2: कने दिखा हां दे किसान भी बिल्कुल तैयारियां ते ना करी रखियां न पट्टियां पुट्टियां ते ना छैल बांकियां बनाई दी कने हुण सै मतलब दे दियां जानकारियां मिलने दी नाल ही करा दे
0: बिल्कुल जी कने देखा जानकारी दे बाद फिर ते टियाले विच समा होया है एक लोकगीत है ना जी
2: हां देर नहीं करनी है कने टियाले पर लगानी है रौनक
0: जी

0: जी किसान साथियों, इस लोकगीत के बाद घड़ी ही सूईया बोला दी पे हूँ विराम करा तो तुसो जाते जाते दसी दे कार्यक्रम प्रस्तुति जितेंद्र पाल सिंह कने इसके बाद तुहने फिर मिलना है तो हूँ कार्यक्रम संपन्न करने दी दिया अनुमति।
1: अच्छा जी जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाणी FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं सचिव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। ये विशेषकर महिलाओं के लिए रहेगा।

0: कार्यक्रम मिंजरा सुनने वाली सारिया सखिया भैन का स्वागत है। अज तिना कने जुड़ियो तिना दी अपनी सखी अपनी भैन लक्ष्मी कने कार्यक्रम विच तुहां सारियां दा ही मैं स्वागत करती है। अज का कार्यक्रम सजीव है। सजीव यानी कि तुसां हाने सीधियां जुड़ी सकदियां, कुछ कारणां ते तां हां कुछ वक्त तक नहीं करी सके, लेकिन हुण अह वल वक्त है तो मैं बोलदी वक्त नहीं गुआना, कने असां जुड़ना अपनियां भैणां ने भी तिना क्या काम कार लगाए उन कने से क्या क्या करा दियां न। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी।
1: मैडम जी नमस्ते।
0: कौन बोला दे?
1: मैं श्रीया बोला दी।
0: अच्छा जी, कुतू ते बोला दे?
1: नगरोटा सोनिया
0: जी। श्रेया जी तुहांदा स्वागत है कार्यक्रम मिंजरा च। एक क्या कर दे तुहां, पढ़ दे की घर गृहस्थी संभाल दे?
1: पढ़ दे।
0: अच्छा, कितनी क्लासी च?
1: 12वीं।
0: अच्छा, बड़ी अच्छी गल है। अहां दे कार्यक्रम सुनदे रहंदे की अज इयां ही फोन लगाई था?
1: इन्ने सुनदे रहंदे हां, बड़े मस्त लगदे।
0: हैं, बड़े अच्छे लगदे। धन्यवाद तुहांदा। अज कार्यक्रम च तुहां फोन कीता, तुहांदा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।

जी तां कार्यक्रम है मिंजरा कन्या। इस कार्यक्रम विच अहांदियां भैणां सखियां हन, असीं दियां जुड़ी सकदियां। इत्थों दा नंबर मिलाईकिरी 0182-224-391 कन्या हन, सीधी गलबात करी सकदियां।

0: हेलो,
1: यह नंबर मौजूद नहीं है, कृपया।
0: जी तां दिखा सारियां भैणां फोन मिला दियां, कन्नै कई कारणां ते कई वारी फोन नहीं भी मिलदा या मिलिया हुआ तां कटोई आंदा। तां सारिया ने गुजारिश करनी है भई ये कार्यक्रम अहां दियां भैणां दा अपना खास कार्यक्रम है, इस विच पूरी कोशिश करन ते अहां दियां भैणां ही फोन करन। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी।
0: कौन बोला दे जी?
1: अच्छा, फतेहपुर तो बोल रहे
0: अच्छा फतेहपुर ते, ना दसनी हो जी अपना?
1: ना सीमा जी।
0: जी सीमा जी, स्वागत है कार्यक्रम विच। और सुना जी, कैसे हाल चाल?
1: ठीक है जी।
0: अच्छा फोन किता कार्यक्रम विच, कुछ खास गल करनी हो है या?
1: हाँ, सूरज जी, तुहाडे प्रोग्राम बड़े अच्छे लगते हैं सानू,
0: जी
1: अस सुनते
0: धन्यवाद
1: हैं।
0: जी, धन्यवाद जी। कौन सारे कार्यक्रम सुन दे की कुछ
1: हाँ जी,
0: खास?
1: हाँ, सारे सुन गए, बड़े अच्छे लगते सानू।
0: अच्छा भी मतलब प्यागा ते लेके संझा तक तुहां
1: हाँ
0: सारे
1: जी, हाँ जी,
0: कार्यक्रम दा आनंद लेंदे?
1: हाँ जी, बड़े अच्छे लगते प्रोग्राम तुहाडे।
0: जी चलो दिखा तुहां सही श्रोते होन, जुड़े रहन कार्यक्रम विच, कने अहां विच टियाले पर इत्थू या फोन फान करदे रहन, तां इसते अहां भी इक हौसला मिलदा।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: और दिखा कम कार क्या लगाए तुहां घरां च अजकल?
1: छुट्टियां पड़ियां न्याणियों।
0: अच्छा तो छुट्टियां मतलब गलाने दा की तंग भी करा दे होने कने
1: हाँ
0: कने
1: जी, बड़ा
0: कने?
1: परेशान कर दे।
0: चलो कोई नहीं, दिखा बच्चे वाले घर हो तंग होंदा कोई ना।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अच्छा कार्यक्रम च तुहां फोन किता, तुहां बड़ा बड़ा धन्यवाद, कने तुहां सुनाना एक प्यारा दिया लोक गीत।
1: हाँ जी, ठीक, थैंक।
0: जी धन्यवाद जी।

तुहां दे रेडियो सेट च इस वक्त कार्यक्रम चलिया है मिंजरा कने तुहां भी इस विच फोन करी सकदे। नंबर है 0182-224-3991 कने कार्यक्रम खास हां दियां महिला पैणा वास्ते है।

0: हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोला दे?
1: हेलो। हाँ
0: हाँ जी, नमस्कार जी। कार्यक्रम
1: जी नमस्ते। ए,
0: च स्वागत है तुम्हारा। नाम दसने जी अपना।
1: ए, मेरा नाम मंजू बाला है,
0: अच्छा
1: आपका
0: जी,
1: नाम?
0: अहां दा कार्यक्रम तुहां सुना दे, तुहां कन्ने जुड़ी हो तुहां दी अपनी सखी लक्ष्मी
1: ए पहाड़ी की सुनाने जी।
0: जी। पहाड़ी सुनने कने कार्यक्रम यहां दा पहाड़ी है, अपनी भैणा कन्ने हाँ गलबात पहाड़ी च ही करा दे जी।
1: हाँ जी,
0: और तुहां सुना, कम कार क्या लगायो?
1: ए बस रोटी पानी का काम है, चाह पानी का काम होया करना है। हाँ जी
0: अच्छा जी, चलो बड़ी अच्छी गल है। खेती बाड़ी भी कर दे?
1: हाँ जी हाँ।
0: अजकल खेतीबाड़ी का क्या क्या काम जोरा शोरा पर है?
1: ए छली छली का काम है बस।
0: अच्छा,
1: तो हाँ गीत सुनाई दे पहाड़ी को
0: बिल्कुल
1: सुना।
0: सुनाई देना जी, तुम्हारी फरमाइश कर देनी पूरी। कने कार्यक्रम च फोन किया, तुम्हारा धन्यवाद जी।
1: हाँ जी हाँ, आपका भी धन्यवाद।
0: जी

0: हेलो।
1: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
2: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
2: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी। दिखा मैं सोचा भैन का कार्यक्रम, मैं कहने भाई और फोन करी था, पर चलो तुहां संभाली लिया जी।
2: हाँ जी, हाँ
0: जी। और सुना जी, ना दसा जी अपना।
2: मेरा नाम मीनाक्षी छतड़िया ते बोल रही
0: हूं। अच्छा जी, मीनाक्षी जी स्वागत है तुहां दा कार्यक्रम मिंजना च जी। और सुना जी, काम कार क्या लगाए हो? कार्यक्रम कौन कौन हांदे सुन देख दे लग दे?
2: काम कार कोई कुछ भी नहीं है, खेती बाड़ी थोड़ी लाइया ना जी।
0: जी जी,
2: हां जी।
0: और सुना जी, हांदे कार्यक्रम तुहां सुन दे, खास सुन दे या सारियां जो ही?
2: हां जी,
0: हां दे कार्यक्रम सारे सुन दे या कुछ खास ही कार्यक्रम?
2: हां जी, हां जी, हां जी, सुबह दे टाइम तो जरूर सुन दे ना।
0: अच्छा जी, कदे लगदे कार्यक्रम?
2: अच्छे लगदे बड़े।
0: अच्छा जी, तो हां दिखा फोन मिलाया कने, कईयां दा फोन नहीं मिला ता सा नाराज भी हो जांदे।
2: हां जी, हां जी,
0: चलो तुहां दा फोन लगी आ,
2: मेरी गल होई जांदी थी थोड़ा थोड़ा।
0: चलो अच्छी गल है, कोशिश करा करा भई थोड़ा ते अंतराल दे के फोन करा करा, ताकि बाकीयां दा भी।
2: हां जी, हां जी, इयां ही करदे।
0: चलो हां जी,
2: महीने होई हो मिंजे
0: कि नहीं? नहीं, तो महीने महीने करा करा, कोई गल नहीं।
2: अच्छा जी,
0: जी धन्यवाद जी कार्यक्रम च फोन करने दी तुहां दा।
2: हां जी
0: जी।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
6: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो, हाँ जी नमस्कार जी।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: हाँ जी, नाम दसने जी अपना।
2: मैडम जी मीनू बोल रही नगर रोटी ते।
1: अच्छा मीनू जी, स्वागत है। और सुना जी, क्या हाल चाल है ना?
2: बस मैडम जी बढ़िया।
1: अच्छा ये दसा पे काम कार क्या लगायो का, जो की थोड़ा कड़िए सुइया दा वक्त भी कटा था ना?
2: बस काम कार कुछ नहीं, खाना बनाने का काम लगाया।
1: अच्छा जी, चलो अच्छी गल है, खाना बनाना भी कम ही हुंदा। और आहां दे कार्यक्रम सुन दे रोज?
2: हाँ जी मैडम जी, सारे कार्यक्रम सुन दे। चलो लगा
1: जी, तो चलो अच्छी गल है, तुहां सही श्रोते जुड़े होन ता कार्यक्रम करने दा भी मजा हुंदा।
2: मैडम जी पहले बंद ही होई आ प्रोग्राम
1: ए मिंजरा, तो चलो कुछ कारण ते थोड़े के दिन तुहाने हां गल बात नहीं कर सके।
2: हाँ जी
1: थोड़ा चले था, मतलब चुनाव दा भी समय था, हुन शुरुआत फिर हुई दोबारा।
2: अच्छा जी
1: जी,
2: पहले भी सुना है पर वे नहीं हो रहा मैंने।
1: हाँ जी
2: बंद होई है।
1: नहीं नहीं बंद नहीं हुए जी। चलो अच्छी गल है, जुड़ी रहा करा, फोन कर दे रहा करा।
2: हाँ जी मैडम जी,
1: तो हाँ धन्यवाद जी।
2: ठीक है मैडम जी।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है और पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और गुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो

0: डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम हैं। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है, और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है, और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, मिलते नहीं,
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है, वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा, और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे।

0: तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी।
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड, AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहां पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल।
1: आज जो है भारत में 170,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 182,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता, और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया। आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर, दवा से लेकर, जांच तक सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड 19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड 19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड 19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड 19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड 19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है।
1: जी।
0: और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है, उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है, उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर, अगर हम 2031 तक बात करें, तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा। तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे, अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं, उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान, बीड़ी, मसाला, शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं। और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है और जैसा आपने बताया, आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार।
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR. On our YouTube channel News on AIR Official, you may your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने करेगी जारी। मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना भी सरकार ने ली वापिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में किया जा रहा है विकसित, सर्वेक्षण कार्य पूरा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रदेश के लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील, खजियार में मतदाताओं से किया संवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व खाद्य दिवस पर लोगों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने का किया आग्रह। और अटल टनल रोहतांग में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी पर्यटकों की आवाजाही, लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने यातायात दबाव को देखते हुए तैयार की कार्य योजना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के सभी पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने जारी करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वित्त विभाग की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना को वापिस लेने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य सभी को अगले महीने के पूरे वेतन के साथ स्थगित वेतन का बकाया जारी किया जाएगा।
1: चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और जो MLA हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो डेफर की गई थी सैलरी को, उस डेफरमेंट की जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको मैंने विड्रॉ कर दिया। अगले महीने से उनकी डेफरमेंट सैलरी जो 3 महीने का एरियर होगा वो भी मिलेगा, और जुलाई में उनको पूरी सैलरी भी मिलेगी एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर को छोड़कर। मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो 65 साल से 1/16/31/2022 के थे, उनका जो भी एरियर है वो 65 से 70 साल के बीच में, वो भी अगले महीने हम उसको रिलीज कर देंगे।
0: मुख्यमंत्री ने HRTC के पेंशनरों को हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम को सरकार की ओर से हर महीने 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने HRTC के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने की भी घोषणा की।
1: तो सरकार ने ये फैसला किया है कि 7 से 10 तारीख के बीच में HRTC की जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन मिल जाया करेगी, और वो पेंशन के लिए उनका डिपार्टमेंट जो है HRTC जो है उसको हम 20 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे। HRTC के पेंशनर्स की टोटल पेंशनर का खर्चा 23 करोड़ है, 3 करोड़ HRTC जो अपना रेवेन्यू होता है उससे दिया करेगी, ये हमने उसको कहा है। तो उनकी एक और मेडिकल रिवर्समेंट की बात थी, तो 20 करोड़ रुपया मैं मेडिकल रिवर्समेंट के लिए उनको दे रहा हूँ ताकि उनका पूरा मेडिकल रिवर्समेंट हो जाए।
0: इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में विकसित किया जा रहा है और इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने आज शिमला जिले के हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 4 लेन परियोजना में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भूस्खलन से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हाटू माता रोपवे परियोजना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है और नाबार्ड की सहायता से ये परियोजना चलाई जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाटू माता सड़क के सुधार कार्यों के लिए धनराशि मंजूर की गई है और इस कार्य में पेड़ों को कटान से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने निर्विरोध चुनी गई नगर पंचायत नारकंडा को 50 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। उन्होंने आज चंबा जिले के खजियार में बूथ स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मतदाताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदान को लेकर अनेक सवाल पूछे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश में 12 लाख मतदान केंद्रों पर काम करने वाले बूथ स्तर के अधिकारी चुनाव आयोग के धरातल पर काम करने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपने जीवन में प्रत्येक चुनाव में मतदान करने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चंबा जिले के मतदाता भविष्य में होने वाले चुनावों में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करें।
2: इतना बड़ा लोकतंत्र है आपका देश भारत, जिस चुनाव आयोग ने, अधिकारियों ने, हमारे कलेक्टर साहिबान लोगों ने ये आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार कौन सी? भारत की सरकार। 65 लाख लोग काम करते हैं।
0: आज विश्व खाद्य दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने व संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है, समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रशिम रथी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय रशिम रथी पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि थे और उनके समानता व देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी दिनकर की रचनाओं में निहित शाश्वत मूल्यों को आत्मसात कर देश के उज्ज्वल भविष्य की ध्वजवाहक बनेगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।
3: छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक पहलू पर भी, रचनात्मक पहलू पर हर तरह से काम करता है। ओवरऑल एक छात्र का कैसे डेवलपमेंट हो, उसकी सहभागिता समाज के हर वर्ग में किस प्रकार से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम करे, विद्यार्थी परिषद से खास तौर से पूरे देश के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि देश के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि, संस्कार और संस्कृति के साथ काम करने के लिए अगर कोई छात्र संगठन है तो विद्यार्थी परिषद है।
0: इस बीच जयराम ठाकुर ने शिमला के विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान वर्ग कार्यक्रम में भी भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अटल टनल रोहतांग क्षेत्र में पिछले कुछ समय से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है और यातायात दबाव को देखते हुए लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने एक कार्य योजना तैयार की है। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन व सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ इस बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन को संभावित आपदाओं व चुनौतियों से निपटने के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार रखने को कहा गया है।
4: ओवर द ईयर्स ये देखा गया है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो काफी इंक्रीज हुआ है, इससे डिजास्टर लाइक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अटल टनल है इसमें मेंटेनेंस कब कब होती है, इसका ऑक्सीजन लेवल, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर तो क्या SOPs रहेंगी इसमें। BRO से बोला भी गया है कि इन केस ऑफ डिजास्टर तो सिनेरियो बिल्डिंग करी जाए, इसमें डिफरेंट SOPs बनाई जाएं ताकि हम इसमें मिलके काम कर पाएं और ये प्लान कर पाएं कि इस जगह को ये जितनी सुंदर है और जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बना रहे और कोई आउटवर्ड इंसिडेंट ना हो।
0: सिरमौर जिले के दुर्गम क्षेत्र हरिपुर धार का राजकीय प्राथमिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस स्कूल में 200 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूल के 3 विद्यार्थियों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। स्कूल के अध्यापक कमल शर्मा ने बताया कि स्कूल के 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण जयंती माध्यमिक मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मिल रहा है और इसके तहत प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। खास बात यह है कि हरिपुर धार स्कूल में हर वर्ष बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
5: ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी इस पाठशाला से हर वर्ष नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों का चयन होता रहा है। इस वर्ष भी हमारी इस पाठशाला से 3 बच्चों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। नवोदय के अतिरिक्त यहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन है वो सैनिक स्कूल के लिए भी हुआ था। 8 बच्चे ऐसे है जो स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप की जो योजना है उसमें 1,80,000 बच्चों को दिया जाता है, उससे लाभान्वित हो रहे।
0: शिमला के निकट जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय लोहराब में 4 वर्षीय ललित कला स्नातक BFA डिग्री में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून तय की गई है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कामयानी बिश ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पहले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज में 12 से 19 जून तक प्रवेश पूर्व परामर्श दिया जाएगा। कामायन बिश्ट ने कहा कि इच्छुक विद्यार्थी BFA डिग्री पाठ्यक्रम के तहत पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, संगीत, गायन व वाद्य, तबला और नृत्य विषयों में प्रवेश ले सकते हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल आज मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे समय से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने करेगी जारी। मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना भी सरकार ने ली वापस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में किया जा रहा है विकसित, सर्वेक्षण कार्य पूरा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रदेश के लोगों से की बढ़ चढ़ कर मतदान करने की अपील। खजियार में मतदाताओं से किया संवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने विश्व खाद्य दिवस पर लोगों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने का किया आग्रह। और अटल टनल रोहतांग में पिछले कुछ दिनों में बड़ी पर्यटकों की आवाजाही। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने यातायात दबाव को देखते हुए तैयार की कार्य योजना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने देशगान।

0: देशगान अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये गजल।

अभी आपने सुनी गुलाम अली की आवाज़ में गाई ये गज़ल, अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति इस प्रोमो के बाद।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।

0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियाँ और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: कार्यक्रम सबरस में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनॉय की आवाज़ में गाया ये गीत।

अभी आपने सुना अलीशा चिनॉय और साथियों की आवाज़ों में गाया ये गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं शालमाली खोलगड़े की आवाज़ में गाया ये गीत।

अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: लो भाई हुण सुखविंदर दी आखिरी आइटम। ओए होए होए होए होए यार ओ धक्के के मरी
1: जाने यार। अब आपने सुना सुखविंदर सिंह व साथियों की आवाज़ों में गाया ये पंजाबी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब रस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही कव्वाली।

0: अगर घूंघट उठा दूं
1: तो मैं आंखें लड़ा दूं।
2: सोनू निगम व साथियों की आवाज़ों में गाई इस कव्वाली के साथ हमारा आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
0: मैं चंदन,
1: मैं चंदन, मैं चंदन हूँ, बहू हूँ।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

देशभक्ति के इतने समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले सुनते हैं जरूरी सूचना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें कि कल प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक सजी फोन इन कार्यक्रम रहेगा, जो कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर किया जाएगा। इसमें आप सभी श्रोता जुड़ सकते हैं। हमारे स्टूडियोज़ का फ़ोन नंबर रहेगा 01892224391। इस नंबर पर आप जुड़कर अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो कल प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक हमारे संग जुड़ना ना भूलिएगा। सूचना समाप्त हुई। देशभक्ति के इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से।

0: एआर रहमान व साथियों की आवाज़ों में गाए इसी देशभक्ति गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या व रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन, पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
6: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral forums. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jayashankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत। आज हम आपको सुनवाएंगे निर्माता निदेशक संजय गढ़वी द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा गीत।

कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं निर्माता निदेशक संजय गढ़वी द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ गीत। जी हाँ श्रोताओं, ये एक भारतीय फिल्म निर्देशक और लेखक थे। उन्हें मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में धूम श्रृंखला की पहली दो सुपरहिट फिल्मों धूम और धूम टू के निर्देशन के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 22 नवंबर 1965 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। परिवार की अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध गुजराती लोक कलाकार और कवि मनुभाई गढ़वी के बेटे थे। इसके अलावा वे मशहूर गायक पंकज उद्धास और मनहर उद्धास के भांजे थे। इनकी पत्नी का नाम जीना है। इनके प्रमुख फिल्मी करियर की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत वर्ष 2000 में फिल्म तेरे लिए से की थी। इसके बाद 2002 में उन्होंने मेरे यार की शादी का निर्देशन किया। धूम 2004 जो उनकी सबसे बड़ी सफलता थी, ये सन 2004 में आई, जिसने भारतीय सिनेमा में स्टाइलिश एक्शन और वाइकिंग कल्चर को एक नई पहचान दी।

0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लीजिए सुनिए ये जरूरी सूचना। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कल प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम रहेगा, जो कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर प्रसारित किया जाएगा। इसमें आप श्रोता भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको डायल करना होगा 01892-224-391, ये स्टूडियोज का नंबर, और आप अपने विचार हमारे संग साझा कर सकते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर। सूचना समाप्त हुई, ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: Give me this one.

0: मैंने बोला हाँ जी।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
2: अप्रैल माह से प्रारंभ 3 कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है।
3: खबर मिली और खेल

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन्स को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
4: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूँगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज़ और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अब भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है, और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज़ रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज़ रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनके सफर की कुछ अनसुनी यादें।
5: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were
6: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपनी स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
0: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
7: सबसे पहली चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
0: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
1: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
8: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
9: हर हंसी ख्वाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
8: दो मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
9: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
10: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन, यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
0: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़, जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहां एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियां हर पीढ़ी तक पहुंचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
11: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए, वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जय जी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी। हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला, आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
0: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ,
1: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
0: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के क्वालालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास याफ्ता रसूल को। याफ्ता रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ जहां पे वो चौकन है वहां पे पहुंच गया अब्बास। अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में। और ये खेल खत्म, भारत 2-1 जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविन डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
1: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
0: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
3: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना। लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआती क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुँचाया ही नहीं, बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिसने नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
0: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
4: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं, मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
0: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स स्कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
5: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉर्नामेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तमपुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
0: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती हैं।
6: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल, घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
0: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है अब रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी।
2: ये आकाशवाणी है, नमस्कार। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री M.S.N. मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
3: This is Akashvani. Good evening, listeners. Welcome to Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
2: Sri M.V. Subbarayadu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke pariveesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री NCH कृष्णमाचार्यलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री M.S.N. मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री M.S.N. मूर्ति को वायलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री M.S.N. मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M. हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
3: श्री M.S.N. मूर्ति's exposure to music began early. His mother, श्रीमती M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, श्री M.S.N. मूर्ति trained under the guidance of संगीत साहित्य कलानिधि श्री NCH कृष्णमाचार्यलु. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M.S.N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M.S.N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M.S.N. Murthy has performed extensively in the country and abroad, in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri MSN Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the Mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Sakit Pantula.
2: विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति आज के कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। अठाना राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
3: श्री एम एस एन मूर्ति बिगिन्स दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाना रागम खंड चापू तालम।

0: एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। दैट वॉज तन्यावर्तनम ऑन द मृदंगम by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। आप पहले हिंदी में समाचार हुआ रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nobunita Adhikari Srivastav. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields, including political, defense and security, maritime trade and investment, pharma and healthcare, digital energy, connectivity, space, education, consular and culture domain, and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister Agnimitra Paul today chaired a high-level administrative review meeting in Siliguri. Discussions focused on municipal affairs, women and child development, social welfare, disaster management, sanitation, drainage, waste management, traffic regulation and the implementation of various government schemes. Later addressing the media, Ms. Paul said, Darjeeling, Mirik, Karsiong, Kalimpong and Siliguri will soon be developed as 5 Himalayan cities. She said Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal has expressed support for developing these towns, which is expected to boost tourism, trade, the tea industry and the regional economy as well as generate employment opportunity. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding tomorrow for the implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari. Lok Sabha Speaker Om Birla asserted that the vision of Viksit Bharat 2047 can only be realized through public participation, innovation, entrepreneurship and collective resolve. Addressing a conclave in New Delhi today, Mr. Birla emphasized that entrepreneurship and nation building must progress hand in hand to ensure that the benefits of development reach every section of society. He noted that India's journey towards becoming a developed nation must be guided by inclusive growth, social responsibility, and active citizen engagement. The southwest monsoon has further advanced into some more parts of west central and entire northeast bay of Bengal today. According to the Indian Meteorological Department, southwest monsoon also advanced into some more parts of northwest bay of Bengal, entire Nagaland, Manipur, Mizoram and some parts of Tripura, Assam and Arunachal Pradesh today. It predicted heavy to very heavy rainfall with isolated places over coastal Karnataka, interior Karnataka, Kerala, Mahi, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim tomorrow. Delhi Chief Minister Rekha Gupta and Union Minister of State for Road Transport and Highways Harsh Malhotra today laid the foundation stone for 138 crore rupees sewer development project in Delhi's Karwal Nagar Assembly constituency. Addressing the gathering, the Delhi Chief Minister said over the past year, development projects worth more than 300 crore rupees have been approved in Karwal Nagar Assembly constituency through the Chief Minister Development Fund, the MLA Fund and the Yamuna Par Development Board. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the newly constructed Savarisam building at the Ayappa Temple Complex in Arkipuram, New Delhi. In a social media post, Mr. Shah said that Lord Ayappa is the bestower of bliss and the embodiment of the sacred values that unites the nation. The minister added that he prayed to the deity for the well-being and prosperity of all. Indian wrestlers continued their impressive run at the Ulaanbaatar Open in Mongolia today, winning 2 gold and 2 bronze medal in the men's freestyle category. Deepak clinched the gold medal in the 61 kg category, defeating Kazakhstan Asil Akkan 6-0 in the final. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा ये प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। अपने कल प्रातः के प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।